0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
1: शान रिजालत मौला।

0: सजन ते पान धरू तब धंधा।
1: इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, जने पणू था धरू सजन ते पान धरू तब धंधा, यानी जब भी हम सरकार पे दरूद भेजते हैं वो हमारा दरूद समाज फरमाते हैं, ये हमारा अकीदा है। ऊंचा बोले सुभान अल्लाह। समाप्त हो।

इलाके वालों को पता चल जाए, उनको भी पता चल जाए इस पिंडाल में मौला अली के आशिक बैठे हैं। बाबा से बुलंद मैंने वापस सिंध जाना है, आपकी आवाज सिंध तक मेरे कानों में गूंजती रहे। बाबा से बुलंद।

आशिक बैठे हैं तो अभी उतनी आवाज नहीं आई। महफिल वाला पता नहीं कहाँ बैठा है, मैं तो जानता किधर है, सारे ही महफिल वाले। हाँ, ये जितने स्टेज पे बैठे हैं इनको इतनी आवाज सुनाए, इतनी आवाज आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी जितनी ये आशिक अब निकालेंगे। समा फरमाए बाबा बुलंद, जितनी अल्लाह ने जान में ताकत दी है उतनी जान के साथ मोराली के नारे का जवाब देना है। बाबा बुलंद, हैदर वर का सकीन कोई नहीं किया है जग सारा सफर का बेड़ा।

0: बस बस खत्म। जो बाहर खड़े हैं वो भी बोल दे
1: हो नारे हैदरी।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

संपर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: सतरूद सजन ते पान करू तब धंधा।
1: इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, जने पढ़ू था दरूद सजन ते पान दरूद बुधन था, यानी जब भी हम सरकार पे दरूद भेजते हैं वो हमारा दरूद समाज फरमाते हैं, ये हमारा अकीदा है। ऊंचा बोले सुभान अल्लाह। समाज फरमा।

ऐसा नारा लगाएं इलाके वालों को पता चल जाए, उनको भी पता चल जाए इस पिंडाल में मौला अली के आशिक बैठे हैं। बाबा से बुलंद मैंने वापस सिंध जाना है, आपकी आवाज सिंध तक मेरे कानों में गूंजती रहे। बाबा से बुलंद हैदर।

आशिक बैठे हैं तो अभी उतनी आवाज नहीं आई। महफिल वाला पता नहीं कहाँ बैठा है, मैं तो जानता किधर है, सारे ही महफिल वाले। हाँ ये जितने स्टेज पे बैठे हैं इनको इतनी आवाज सुनाए, इतनी आवाज आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी जितनी ये आशिक अब निकालेंगे। समा फरमाए बाबाजे बुलंद, जितनी अल्लाह ने जान में ताकत दी है उतनी जान के साथ मौलाली के नारे का जवाब देना है। बाबाजे बुलंद हैदर वर का सकीन कोई वेखी आए जग सारा दबर दबेड़ा पार।

0: बस खत्म। जो बाहर खड़े हैं वो भी बोल दे
1: हो नारे हैदरी।
2: हर दिन शदीद गर्मी सबब शहरन के गुजारिश कई वने थी त सुबुह 11 वगे खां शाम 4 वगे ताई खास एहतियाती तदबीरू अख्तियार कन। गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो, उन दौरान शदीद जिस्मानी कम का पासो करियो। बारन बुजुर्गन बीमार मानन जो खास ख्याल रखो। वधिक पानी पियो, महफूज रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध PDMA कमिश्नर कराची के इलेक्ट्रिक सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन से पेश कयो वयो। अवां जी स्किन डल बेरोनक लगे थी हाने पहिजी स्किन के दियो एक नओ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम। अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट। हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छावां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
5: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
4: 0331257 86।
5: जी हा 2315525786
4: GFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: नाराज़ पोइ ज़ाहिरु कयो आहे। ओमान आमदनी हुरमुस ते टैक्स न लॻाइण जी ख़ातिरी कराई आहे। ईरान जी मदद करण ते ओमान ते पाबंदियूं लॻाई वेंदियूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जी कोशिशनि सां अमरीका ऐं ईरान विच में 47 सालनि बाद सिधियूं ॻाल्हियूं थियूं ऐं पाकिस्तान खे आलमी सतह ते नई सुञाणप मिली। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जी वॉशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस संदसि चवण हो त अमरीका ऐं ईरान विच में हाणे बि जंगबंदी में वाद पाकिस्तान जी कोशिश सां थी आहे। पाकिस्तान खे दुनिया में अकेलो करण जी भारतीय पॉलिसी नाकाम थी वई। संदसि चवण हो त इब्राहिमी मुआहिदे ते अफ़वाह गर्दिश करे रहिया आहिनि। पाकिस्तान जो मौक़िफ़ वाज़े आहे। जेसीं ताईं 1967 खां पहिरीं जी सरहदन ऐं अल-क़ुद्स अल-शरीफ़ जी राजधानी सां गॾु फ़लस्तीन खे तस्लीम नथो कयो वञे, तेसीं ताईं पाकिस्तान जे मौक़िफ़ में लचक न ईंदी। पाकिस्तान जे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जे रूबियो सां मार्को रूबियो जो चवण आहे त पाकिस्तानी नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार सां मुलाक़ात में ख़िते में अमन जे क़याम लाइ पाकिस्तानी किरदार ते शुक्रियो अदा कयो। असाइते भाईवारी खे वधीक मुस्तहकम करण जी अहमियत ते ज़ोर ॾिनो। ॿिन्ही मुल्कनि जी सलामती ऐं ख़ुशहाली लाइ गॾियल सहकार वधीक मज़बूत करणु ज़रूरी आहे। इसहाक़ डार जो चवण आहे त मार्को रूबियो सां ख़ुशगवार मुलाक़ात दौरान पाकिस्तान जो सफ़ीर ऐं ॿिया परदेही अमलदार मौजूदु हुआ। महांगाई सटियल आवाम खे रिलीफ। हुकूमत पेट्रोल ऐं डीज़ल जी फी लीटर अघ में 22 रुपया छॾी। पेट्रोल जो नओं अघु 381 रुपया ऐं 78 पैसा ऐं डीज़ल जी फी लीटर क़ीमत 380 रुपया 78 पैसा मुक़रर। गैसलेट 41 रुपया 44 पैसा फी लीटर 272 रुपयनि जो थी वियो। नवां अघ राति 12 खां लागू थी विया। वज़ीर आज़म चयो त आवाम खे रिलीफ ॾियण अवलीन तरजीहनि में शामिल आहे। वफ़ाक़ी हुकूमत मौजूदा सख़्त हालातनि बावजूद आवाम खे रिलीफ ॾियण लाइ भरपूर क़दम खणी रही आहे। सदर आसिफ अली ज़रदारी सेनेट ऐं क़ौमी असेंबली जा बजट इजलास 5 जून ते तलब करे वरिता। क़ौमी इजलास शाम 5 ऐं सेनेट जो इजलास शाम 6 थींदो। इजलास में ईंदड़ बजट ते बहस थींदी। सदर आसिफ ज़रदारी जो बालूजा कमर जे क़ब्रनि ते हाज़िरी। सदर आसिफ ज़रदारी वालिद हाकिम ज़रदारी ऐं वालदा बल्कीस बेगम जे क़ब्रनि ते गुलनि जूं चादरूं चाढ़े फातिहा पढ़ी। सदर मुमलिकत सां सदस सयाल बि गॾु हुआ।
1: कराची साइड एरिया फैक्ट्री अंदर बिन धुर में जेड़ो फायरिंग में 2 नौजवान कतल। रेस्क्यू सर्विस जो चवण आहे त लाश अस्पताल मुंतकिल कया विया आहिनि। मक़तूलनि जी सुञाणप 40 वरनि जे मोहम्मद कादर ऐं 35 वरनि जे अली गोर तौर थी आहे। पुलिस जो चवण में जेड़ दौरान 2 ॼणा मारिजी विया आहिनि। वधीक जांच करे रहिया आहिनि।
0: मीरपुर ख़ासि तालीमी बोर्ड करप्शन खे किरदार जा छिरकाईंदड़ इदार नईम भोरी चयो आहे त मनपसंद इम्तिहानी मर्कज़ लॻाए शागिर्दनि ऐं शागिर्दारनि खे कापी कराई वेंदी हुई। रिश्वत एवज़ मैट्रिक खां वठी इंटर ताईं A1 ऐं A ग्रेड मैट्रिक में नंबर वधाइण लाइ 50 खां 60 हज़ार ऐं इंटर लाइ 80 खां 90 हज़ार रुपया रेट मुक़रर। 1000 शागिर्दनि वठी वधाया। रक़म लिफ़ाफ़नि में बंदि कराए अनवर अलीम खे ॾींदो हुयुसि। 2023 में बिल्डिंग खाते जे कम जो ठीको डीसी आफ़ीस जे पीए ख़ालिद मार्फत 1 करोड़ रुपयनि में वरितो। 10 लख रुपया वर्क ऑर्डर कमीशन जी मद में ऐं वधीक 11 लख रुपया पिण ॾिना। कमीशन खां सवाइ को कम नथो मिले। जूनियर ज़ुल्फ़िकार भुट्टो लाड़काणे जे शेख ज़ैद वुमेन अस्पताल ऐं ॿारनि जे अस्पताल पहुतो। HIV में मुब्तला मरीज़नि जी अयादत। जूनियर ज़ुल्फ़िकार भुट्टो लाड़काणे भरिसां ॻोठ मुला अबड़ो में HIV विघे फौत थी। रियान अबड़ो जे घर पहुची वारसनि सां बि तासीयत कई। बंगू भेण भरिसां फुर दौरान मज़ामत क़तल थियल नौजवान ऐं पीसनि जे वारसनि जा लाश मेरा नारदा धरणा। हथियारबंद मोटरसाइकिल फुरण जी कोशिश। अब्दुल रज़ाक मजीदाणो खे क़तल। चौदगी वट मेराण हाईवे ते धरणे सबब दौरान मज़ामत ते ज़ख़्मी थियल पीसन इक़बाल पुजण बि ज़िंदगी जी चंग हाराए पियो। वारसनि जो मेरखी धरणो जवाबदार गिरफ़्तार कर। शिकारपुर बस सां जहान वाह वारे इलाही तकरार था। मारफाणी बिरादरीअ में धुरनि में जहिड़ो फायरिंग में इल्ज़ाम हेठि ॻोठाणो क़तल। औरत ज़ख़्मी। ॻोठ लुकमान जखरानी में जवाबदार शाह बख़्श जखरानी कारे। पाकिस्तान ऐं ऑस्ट्रेलिया विच में 3 मैचेस ते
2: गार्नियर कलर नेचुरल्स जो है अमोनिया के बगैर। इसमें है बादाम का तेल जिससे मिले बिल्कुल नेचुरल लुकिंग कलर जो चले 2 महीनों तक और मेरे सारे सफेद बाल गायब। गार्नियर कलर नेचुरल अब चले 2 महीने सिर्फ 199 रूपए के साशे पैक में।
3: जब ईद का दिन स्टार्ट हो ऑलपर्स टी क्रीमर की गाढ़ी मजेदार चाय से।

0: पुराने दोस्तों से मिलने।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: शदीद गर्मी सबब शहरन के गुजारिश कई वने थी त सुबह 11 वगे खां शाम 4 वगे ताई खास एहतियाती तदबीरू अख्तियार कन। गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो, उन दौरान शदीद जिस्मानी कम का पासो करियो। बारन बुजुर्गन बीमार मानन जो खास ख्याल रखो, वधिक पानी पियो, महफूज रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध PDMA कमिश्नर कराची के इलेक्ट्रिक सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन से पेश कयो वयो।
2: अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज GAFM 90.4
4: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
5: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
5: आई। हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
4: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
4: 0331252576।
5: जी हाँ बुड़ी 331 5576
4: GAFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM।
2: It's 10:15 AM. This time check is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niyajosho. A product by Biocon International Pakistan.

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर माथली और GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
2: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
2: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 0331252576।
2: जी हा, 2315525786।
1: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क,
2: सिंध जो आवाज़।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
4: सुनते रहो जीएफएम 90.4।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर माखली और माखली की आवाज GFM 90.4

88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: छोड़ो।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: फलस्तीन के तस्लीम नथो कयो वञे तेसि ताईं पाकिस्तान जे मौक़िफ़ में का बि लचक पैदा न थींदी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जी वॉशिंगटन में अमेरिकी परदेह वज़ीर मार्को रूबियो सां मुलाक़ात खां पोइ प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसहाक़ डार चयो त पाकिस्तान अमन जो महिमान आहे। 47 वरहनि बाद अमेरिका ऐं ईरान खे ॻाल्हियुनि जी मेज़ ते विहारियो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं फील्ड मार्शल खे आलमी सतह ते नई सुञाणप मिली। पाकिस्तान खे दुनिया में अकेलो करण जी भारतीय पॉलिसी नाकाम थी वई।

अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जंगबंदी में वाधा बाबत फैसलो न करे सको। व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में अहम इजलास बिना नतीजे खत्म। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की दावा। व्हाइट हाउस पारा ईरान से माहिदो अमेरिकी मुफाद ट्रंप के शर्त तहत ही मुमकिन है। इन अग अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के पहली नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान किया। ईरान आबरा हरमूज खोलण रचा थियल यूरेनियम खत्म करण शर्तूं तस्लीम करण वाली सदर ट्रंप के बयान के रद्द कर छो। ईरानी परे तर्जमान इस्माइल बकाई चवाए तो अमेरिकी सदर जाली फतह जो तासुर देने की कोशिश कर रो है। माहदे में अड़ी का भी गाल शामिल ना जो जिक्र ट्रंप कर पो। ईरान एटमी प्रोग्राम या रचा थियल यूरेनियम के मुकम्मल खत्म करने से कोई इतफाक ना नई अड़ी शिक माहदे में शामिल है। ईरान के एटमी प्रोग्राम से कें भी गाल न पाया क्यों। आबरा हरमूज इंतजाम जो फैसलो ईरान ए ओमान कंदा।

अमेरिका ईरान जा हिकु अरब डॉलर मालियत जा क्रिप्टो असासा ज़ब्त करे छॾिया। अमेरिका जे नाणे वारे वज़ीर स्कॉट बेंसन नेशनल इकोनॉमिक फोरम खे ख़िताब कंदे चयो आहे त हीउ कार्रवाई ईरान ख़िलाफ़ शुरू कयल मुआशी मुहिम जो हिसो आहे। आबदा हरमूज़ जी नाकाबंदी ख़तम करण बाबति सवाल जे जवाब में नाणे वारे वज़ीर जो चवणो त जेको कुझु हटायो वेंदो उहो आहिस्ते आहिस्ते हटायो वेंदो। पहिरियों भेरो ईरान एटमी प्रोग्राम ते ॻाल्हियुनि जे लाइ राज़ ज़ाहिर कयो आहे। ओमान आबदा हरमूज़ ते टैक्स न लॻाइण जी ख़ातिरी कराई आहे। ईरान जी मदद करण ते ओमान ते पाबंदियूं लॻायूं वेंदियूं।

वीरपुर माथे भरसा नौजवान जो मसूबा मां लाश थे गोठ दीमशाह जो रहवासी शफीक चलो काल शाम जो मसूबा के आरडी 78 वट व्यंजने लुड़ी वो नौजवान जो लाश जरूरी कार्रवाई बात बार से न वाले तलहार भरसा मजदा वाटाड़ू के चिभाटे मारे छो हैदराबाद बसी रोड से वाटाड़ू मथा मजदा चढ़ी वही हादसे सबब 36 वरन जो गफूर मलाह मौत ड्राइवर फरार पुलिस मजदा के तहवील में वही छोड़ा।

थुल में परत जे मुबैना कातिल वडे रखे पुलिस नव ॾींहं गुज़रण बावजूद गिरफ़्तार न कयो। नव ॾींहं अॻु वडेरे जे पुट बिलास सरकी चौकीदार अजमल मेमण खे मुबैना तौर टे गोलियूं हणी क़तलु कयो हो। पुलिस बंगारूपण जी वाके खे तफ़ा करार ॾेई केस बि दाख़िल करे छॾियो हो। ज़रिए मुजिबि बासर मक़तूल जे वारसनि खे मीडिया वारो अचण खां धमकियूं ॾेई रोके रहिया आहिनि।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GAFM 90.4।
3: किला सोचे रहे आयो
4: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
4: हाँ गोठन आई बुधो विंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 0331252576।
4: जी हाँ बुड़ी 331 5 5 786
3: GAFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज। अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार, सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
5: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
5: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार लाइन लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252576।
5: जी हाँ 2315257786
4: GFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

इब्राहिमी माहिदे ते अफ़वाहूं हलनि पियूं। पाकिस्तान जो मौक़िफ़ वाज़े आहे। जेसिताईं 1967 खां अॻु जूं सरहदूं ऐं अलकुदस जी राजधानी सां फ़लस्तीन खे तस्लीम नथो कयो वञे, तेसिताईं पाकिस्तान जे मौक़िफ़ में का बि लचक पैदा न थींदी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ राज़ी वॉशिंगटन में अमेरिकी परदेह वज़ीर मार्को रूबियो सां मुलाक़ात खां पोइ प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसहाक़ राज़ी चयो त पाकिस्तान अमन जो महिमान आहे। 47 वरहनि बाद अमेरिका ईरान खे ॻाल्हियुनि जी मेज़ ते विहारियो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं फील्ड मार्शल खे आलमी सतह ते नई सुञाणप मिली। पाकिस्तान खे दुनिया में अकेलो करण जी भारतीय पॉलिसी नाकाम थी वई।

महल में इंडस्ट्री फीडर के मेन लाइन जो तारू चोरी, बिजली बंद, चोर गेट स्टेशन सामू बिजली के चैन थमन मां तारू चोरी कर वाया। बिजली बंद होने सबब वाटर सप्लाई की फराहमी बंद थी वही। राइस मिल्स बर्फ के कारखाने समेत बो कारोबार भी मुतासिर।

जिला अस्पताल कराची में औरत के वॉशरूम में बाह जड़न वाले वाक़े की जांच के लिए कमेटी कायम। जांच टीम वाक़े की जांच कर रिपोर्ट सेहत खाते सिंध के सेक्रेटरी के पेश कंदी। जिला अस्पताल में औरत पारा बार के वॉशरूम में जड़न बाबत वीडियो वायरल थी हुई।

0: पाकिस्तान ऐं ऑस्ट्रेलिया विच में टिनि मैचेस ते ॿधल वनडे सीरीज़ जी शुरूआत अॼु खां रावलपिंडी में थींदी। सीरीज़ जूं बाक़ी ॿ मैचेस लाहौर में खेॾियूं वेंदियूं। पाकिस्तान में वनडे क्रिकेट जी तारीख़ में ही 1000 ई मैच हूंदी। आईसीसी बोर्ड जी मीटिंग भारतीय शहर अहमदाबाद में अॼु थी रही आहे। मीटिंग में टेस्ट चैंपियनशिप जे कानून बाबति गौर वीचार कयो वेंदो। पाकिस्तान अफगानिस्तान इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जा सरबराह ऑनलाइन शिरकत कंदा।
1: सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध के माथे का झूमर
3: GFM 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।
3: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
5: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
6: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिक अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
6: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 0331252576।
6: जी हाँ, 2315525786।
5: GAFM रेडियो नेटवर्क,
6: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
4: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
3: GTH नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GAFM 90.4।

कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में आप लोगों को बताया जा रहा है. खूबसूरती की बातें होती हैं, खूबसूरती की बातें करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जा रहा है क्योंकि कई मरतबा हम ये चीजें जो है ना वो सोचने लग जाते हैं कि हमारी खूबसूरती आखिर हमें कैसे मिलने वाली है या फिर अगर जो हमारी खूबसूरती ये हमारे पास महफूज किस तरह रहने वाली है. कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि शायद आप लोगों को नहीं मालूम पड़ती कहीं और जगह से. तो ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए स्पेशली नशर किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावे से, जिसमें आप लोगों के साथ साथ खुलकर खूबसूरती की बातें की जाती हैं, खुलकर आप लोगों को मशवरे दिए जाते हैं ताकि आप अपनी खूबसूरती का न सिर्फ ख्याल रख सकें बल्कि आप अपनी खूबसूरती की मुकम्मल तौर पर हिफाजत भी कर सकें. तो यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं तमाम लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है. हाँ जी भाईजान, आपकी मोहब्बत और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया. और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो अपने होने का एहसास दिलाएंगे और साथ ही साथ हम भी अपना तारुफ करवाएंगे. सो लिसनर्स, प्रेजेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान. नाम तो सुना ही होगा. तो बिल्कुल आपकी सिद्रा आप लोगों के साथ साथ मुखातिब हो चुकी है और मेरे साथ कौन है मुझे बताएंगे और अपने होने का एहसास दिलाएंगे और साथ ही साथ जरा अपने हाल चाल भी बताते जाएंगे. सो डियर लिसनर्स, अंत की फहालत कैसे ही आपकी हालत उम्मीदन शदीदन की बिल्कुल ठीक ठाक होंगे. सुपकुल मूड के साथ सुपकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे. तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी ना वो खत्म हो चुकी है और फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली. आपको पता नहीं जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं. तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहेगा ठीक अब से लेकर पूरे पूरे 3 बजे तक, यानी कि 2 घंटे हमारे पास मौजूद हो और इन 2 घंटों में हम आप लोगों के साथ खूब सारी बातें करने वाले हैं. तो चलिए जी, बातें करने के लिए रेडी हो जाइए, खूबसूरती के राज सुनने के लिए रेडी हो जाइए और हमारे साथ साथ फुल ऑन एंजॉय करने के लिए रेडी हो जाइए. तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं. बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रहे थे. ऐसी बहुत सारी आंटियां, अम्मियां, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान सुबह अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून. साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में बनेगी चटपटा मसाला बिकॉज आली रे आली सिद्रा आली बोस आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल आने के लिए. तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाते हैं. यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं, आगे से प्रोग्राम करते हैं जी एक बहुत प्यारे से कसीदे के साथ. तो कसीदा सुनते ही प्रोग्राम की स्टार्टिंग, उसके बाद हम जैसे ही वापस आते हैं बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या है. सो आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट. आपका हमारा साथ पूरे 3 बजे तक आप सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए.

क्या बात है जनाब, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत. और इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो. व्हाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो में आता वादा लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है. और इसी के साथ साथ प्रोग्राम आप लोगों तक पहुंचा जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताया जाता है ताकि आप लोगों के जहनों में ये बात आ जाए कि जब आप मार्केट जाएं तो आपने कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना है. अक्सर ये एक बात हमें बड़ा परेशान करती है कि जब आप मार्केट जाते हैं तो आप लोगों को पता नहीं चलता कि भाई आपने जो परचेज करना है प्रोडक्ट वो कौन सा होना चाहिए. तो जब बहुत ज्यादा वाली प्रोडक्ट आप देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं तो कंफ्यूजन आपकी दूर की जाएगी और आपको बताया जाएगा व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में. तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाएंगे, व्हाइट व्हाइट हो जाएंगे, साथ साथ जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी आप लोगों के लिए मौजूद है जो कि आप देते हैं. तो आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक होने वाला है वो ये होने वाला है कि आप मुझे बताएं पर गुस्सा आता है. ज्यादातर तो जब सीजन होता है तो गर्मी में वैसे दिमाग बड़ा गर्म लगा पड़ा होता है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि गर्मी में सबसे ज्यादा किस चीज पर गुस्सा आता है, कौन सी ऐसी बात, कौन सी ऐसी चीज जो कि हमें गुस्सा दिलाती है. तो अगर आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप शामली प्रोग्राम होना चाहते हैं, तरीकेकार नहीं पता तो जनाब क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिग्नल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर. अगर आप मुझे फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जीए लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है. जीए लाड़काना FM 88.8 अगर आप सर्च करते तो आपको इजीली हमारा पेज मिल जाता है. पेज को आपने फॉलो कर लेना है ताकि आपको जब भी हमारा प्रोग्राम चले तो नोटिफिकेशन मिलता रहे. अगर आप पेज को फॉलो कर लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, पेज को फॉलो कीजिए. उसके बाद आप जैसे ही पेज को ऑन करते हैं तो आपको हमारे प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो की लाइव पोस्ट मिल जाती है जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे. तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोग ये जान सके, ये पहचान सके कि इनके खूबसूरती का राज क्या है. और अगर आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट तो हमें बताइए कौन सा प्रोडक्ट आपने लगा लिया और आपको रिजल्ट कैसे मिले हैं. ओके जी, मुझे अच्छा आप बताएंगे कि गर्मी में सबसे ज्यादा किस चीज पर गुस्सा आता है. और इसके साथ साथ जल्दी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए, 8881 पर ज्वाइन कीजिए और फेसबुक पर ज्वाइन कीजिए, पोस्ट को लाइक और शेयर भी कीजिए साथ साथ.

योगी जी हमारे साथ आदिल हुसैन हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं, मैं ठीक, आप बताएं। और कहते हैं कि हम कब्रों पर पांव रखने से डरते हैं लेकिन किसी का दिल रोंदने तोड़ने और तन से तकलीफ देने से नहीं डरते। ये तो बिल्कुल आपने अच्छी बात हमारे साथ शेयर कर दी। आपने गाना जो है ना वो बोला है, लगाने की कोशिश कर देंगे। और नूर हुसैन तुनिया भाई हमारे साथ मौजूद है। नूर हुसैन तुनिया भाई क्या कहते हैं? फ्राम ओके जी। और वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे, लव ब्लेस यू विद द बेस्ट विशेस, टेक केयर, अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे और आपके नसीब अच्छे करे, आमीन जी आमीन, सारे आमीन बोले। और ये अशफाक खोड़ो हमारे साथ मौजूद है, कहते गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून चल रहा है एडा तकड़ा न थियो नी। और अली डिनो शमरानी हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे ही। कहते माँ जैसे शख्स जो मुंतजर हुआ उनके अलावा मुख्य सभी ईद मुबारक चाहिए।

0: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक।
1: अब आपकी
2: खूबसूरती
3: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
4: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
3: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
5: अब आपकी खूबसूरती का फैन, White Age Beauty Cream।

0: मेरा
1: फैन। White H Beauty Cream 5-Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
5: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252576।
5: जी हा, 2315525786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

0: مورو
1: نوشهرو
0: میرپور خاص
1: لارکانا
0: سکھر
1: گونج رہی ہے ہر جگہ پر
0: سندھ کی آواز
1: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک
2: ओके जनाब सो वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास. आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क. हमारे साथ ही जनाब यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरण में राहुल मादली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम और डे स्किन ब्यूटी क्रीम के दावन से आप लोगों तक पहुंचा जाने वाला ये प्रोग्राम क्योंकि आप लोगों की खूबसूरती को ब्यूटीफुल बना रहा है, मजीद आपकी खूबसूरती को निखारने के लिए और आप लोगों के चेहरे को चमकाने के लिए. तो अगर आप भी व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर डे स्किन ब्यूटी क्रीम आप लगा चुके हैं या फिर लगाना चाहते हैं तो आप लोगों को हम बताते हैं कि किस तरीके कार को फॉलो करके ना सिर्फ आप अपनी खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं बल्कि आप इन तमाम प्रोडक्ट्स को अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल भी करा सकते हैं. सबसे अहम बात यह कि भाई जान आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर मिलने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए. आप जिस भी गोर से हैं, जिस भी सिटी से हैं, जिस भी एरिया से हैं, वहां पर ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए. उसके लिए आपने बस छोटा सा काम करना होता है. आपने जो नंबर आपको बता रही हूं ना उस नंबर के ऊपर आपने रابطہ करना है और जल्दी से रابطہ करने के बाद उन्हें बताना है कि आपके एरिया में नहीं मिल रही ये प्रोडक्ट्स और अवेलेबल करवा दें. तो जल्दी से अवेलेबल हो जाएंगे, बताएंगे तभी तो अवेलेबल होंगे ना. तो डायल करेंगे 03 1 5 7 9 9 0 5 9 5. बिल्कुल जनाब 03 1 5 7 9 9 0 5 9 5 ये नंबर तुम डायल करो. पानी करीबी जनरल स्टोर से ही तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराए उतना वहीं इजीली वी अचो जी तवे खूबसूरती में इजाफो थी वे तवे खूबसूरती के मतलब अड़ा प्रोडक्ट मिली वन जिनकी तुम तलाश कर पाया. तो लाजमी तुम इस्तेमाल करी दिसजो उन गडो गड की तरीके कार के फॉलो करी तुम इस्तेमाल कर था वो मैं तक बिल्कुल बुधाईदम. पर अज जो टॉपिक्स है प्रोग्राम जो वो तुम्हें बुधाईदा जिन मानून हाँ असंके जॉइन किया है तो उन्हें सभी मानून के वेलकम चूं था. अज टॉपिक मुखा पुछो है तो मुख्य बुधाओ गर्मी में सब का कड़ी शे तको वो गुस्सो डारी है कड़ी शे जैसे तक सब का गुस्सो इन वैसे गर्मी में हर कें दिमाग गर्म हों पर कड़ी गाल कड़ी शे तक गर्मी में ज्यादा गुस्सो डारी है. तो बिल्कुल तुम ज्वाइन थी सको था प्रोग्राम में 888-1 ते फेसबुक ते मुख्य ज्वाइन करी सको था. तो फेसबुक वाला जी प्यारा प्यारा मानून पोस्ट के लाजमी तुम लाइक शेयर कर हलो ठीक है.

यहाँ पर उदास उदास लड़की है वैसे ये हमारी प्यारी निदली हमारे साथ नाचो जी प्रोग्राम में और कहती है टॉपिक हर बात पर गुस्सा आता है घर वालों को बोलती हूँ पूरी गर्मी में मुझसे जरा बात ना करो ऐसा वैसे हो सकता है। अच्छा दर्द दिल भी हमारे साथ मौजूद है प्यारी वालेकुम अस्सलाम कैसी है ठीक ठाक बताएं जरा वाइटेज प्योरी प्रोडक्ट्स कहाँ तक पहुँचे आए आपकी सिटी में नहीं लगा रही है नहीं अच्छा चाचा बिल्कुल तुम्हारा गानो बुधाए तो आज गानो हलाइंदासी साढ़े वींदासी भला तुम गानो न हलाइंदासी तो अशफाक कहती है टॉपिक मुख्य उन गाल ते तमाम घणो गुस्सो इंदो आहे वो सिर्फ मुख्य खबर आहे चलो न बुधाईंदा ठीक अच्छा किशोर भाई कहते हैं गुस्सो हर इंसान के इंदो आ पर केंजो गुस्सो सुठो ते केंजो बिल्कुल खराब हुंदो आहे गुस्सो वरी सुठो कि हुंदो आहे गुस्सो तो खराब ही हुंदो आहे सनोला ब्रो हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम नूरे संतनियो भाई कहते हैं टॉपिक कहती मुझे गुस्सा नहीं आता सच्ची बताए क्या बातें भाई जादू की बातें हो रही है और साथ साथ यहाँ पर जादू तो तब होगा जब आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने वाले हैं तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपकी खूबसूरती में जादू करने वाले हैं अगर आप अपनी खूबसूरती को बढ़ाना चाहते हैं खूबसूरत रहना चाहते हैं चाहे आप लड़के हो लड़कियां हो सारे लोगों के लिए तैयार किए गए हैं जनाब व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जिनमें आप लोगों को हर तरह के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं जैसे मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट लगाना चाहते हैं जैसे कि अगर आप ब्यूटी क्रीम लगाते हैं तो आपके लिए व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम मौजूद है अगर आप फेयरनेस क्रीम लगाना चाहते हैं तो आपके लिए व्हाइट क्रीम मौजूद है अगर आप साबुन लगाते हैं तो आपके पास व्हाइट एज का ब्यूटी सोप मौजूद है अगर आप फेस वॉश लगाते हैं तो आपके पास व्हाइट एज का फेस वॉश मौजूद है जो कि विटामिन सी से तैयार शुदा है और ऐसे ही बहुत सारे मजीद प्रोडक्ट जैसे कि भाई डॉक्टर पिंपल का एंटी एक्नी ट्यूब भी मौजूद है अगर आपके पास एक्नी है एक्नी आपकी जान नहीं छोड़ रहे तो डॉक्टर पिंपल का एंटी एक्नी ट्यूब लगाइए जो कि आपके चेहरे के एक्नीज को खत्म कर देगा तो बहुत ही मजेदार बहुत ही शानदार बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी वाले प्रोडक्ट तैयार किए गए हैं लाजमी ट्राई करके देखिए ताकि आपको पता चले कि आपकी खूबसूरती कहाँ छुपी हुई थी।

अच्छा वहाँ से भाई आपको भी वेलकम करते हैं, क्या हाल है, ठीक ठाक है अनवर भाई? वालेकुम अस्सलाम, तमाम की बीते जो मुबारक हो जाए, घूमण पाया हुआ। अच्छा निधा कहती है लाकना में तेज गर्मी की बारिश, हम सब एंजॉय कर रहे हैं। सही है भाई, एंजॉय करें। अच्छा आदिल कहते हैं हम गुड बॉय हैं, हम गुस्सा नहीं करते अब किसी बात पर, बहुत अच्छा करते हैं, ऐसे ही गुड बॉय बने रहे। अच्छा वासु भाई कहते हैं अदी सिडो जवाब जनी घर में नंढड़ा बार बोर्ड करना है तनी गुस्सो ही दो है।

हाँ जी मान भी जाए अब वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपकी खूबसूरती जो है वो और ज्यादा बढ़ती रहे और खूबसूरती ना सिर्फ ऐसी वाली आपको मिलेगी जो भाई आप प्रोडक्ट लगाते रहेंगे तो आपको मिलती रहेगी बल्कि अगर आप प्रोडक्ट लगाते हैं आप छोड़ देते हैं तब भी आपके चेहरे पर जो खूबसूरती आएगी वो हमेशा बरकरार रहेगी तो खूबसूरतियाँ जो है ना वो हर कोई हासिल करना चाहता है चाहे आप लड़के हैं चाहे आप लड़कियां हैं अंकल हैं आंटियां हैं सारे लोग ही इस्तेमाल करेंगे वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स क्योंकि वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपके खूबसूरती के लिए तो अभी जाइए अपने करीबी जनरल स्टोर से मालूमात लीजिए वैसे अभी नहीं जाइएगा शाम के टाइम जाइएगा गर्मी बहुत ज्यादा है तो अपना ख्याल

hosting me, MRC. Thank you so much, sir. Khush Aamadi. ओके जी, उसके अलावा अली अकबर बिरोही भाई हमारा शो सुन रहे हैं। अच्छा, किंग फजल हमारे साथ हैं, वेलकम करते हैं किंग फजल आपको। आपके सारे दोस्त हमारे शो सुन रहे हैं क्वेटा पाकिस्तान, वेलकम जी। वैसे किसको पिंक ड्रेस है, मुझे अभी तक नजर नहीं आया कोई पिंक ड्रेस में। चाचा खालिद कहते हैं, माँ व्हाइट एज का फेस वॉश यूज करना चाहता हूँ, बट मिले कौन है तू बेटा सिद्रा, प्लीज आस्क योर। चलें ठीक है, मैं बोलूंगी। वैसे कराची में आप कहाँ पर रहते हैं एग्जैक्ट, आप जो है ना अपना एड्रेस मुझे बताइए। वैसे ऐसे बताइए कि आपके करीबी जनरल स्टोर कौन से हैं, ताकि हम वहाँ पर जो है ना वो अवेलेबल करा सकें। ठीक है, कराची में भी मिलने चाहिए, ताकि जितने भी कराची वाले लोग हमें सुनते हैं तो वो वहाँ से जाकर परचेज कर सकें।

0: हाँ जी मान जाइए आप भी कि आप सारे लोगों ने इस्तेमाल किया है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का. व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स ना सिर्फ आपकी खूबसूरती को बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स बल्कि आपकी खूबसूरती का ख्याल रखने वाले प्रोडक्ट्स. चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हर सीजन में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स, हर स्किन के ऊपर इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स और हर कोई इस्तेमाल करे ऐसे प्रोडक्ट तो लाजमी आप ट्राई करके देखिएगा, आपको मजे आ जाएंगे. ऐसे के साथ साथ टाइम हो जाता है जरा हम न्यूज पे की जाने जाने वाले हैं और इसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाली है. तो आपने कहीं नहीं जाना, आप हमारे साथ मौजूद रहिए, सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारे साथ दीजिए. मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. लगाते जाइए, खूबसूरत होते जाइए.
1: ایران ایٹمی پروگرام یا رچاس یورینیم کے مکمل
2: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک.

इलेक्शन कमेटी के बिन मुतालबन बाबत वजीर आजम शहबाज शरीफ पारा जुड़ियल सियासी कमेटी मुजफ्फराबाद पहुंची वही। कमेटी मेंबर्स में राणा सनाउल्लाह, अहसन इकबाल, तारिक फजल चौधरी शामिल। राजा परवेज अशरफ कमर जमान गालियों के लिए गुजर रात मुजफ्फराबाद पहुंचा हुआ। जरिए मुजिब अमीर मुकाम गिलगित बल्तिस्तान मसूफ सबब गालियों में शरीक नहीं सको। वफाकी हुकूमत आजाद कश्मीर के अहम स्टेक होल्डर्स भी गालियों में शिरकत कर। इब्राहिमी माहदे से अफवाहों हलन पय। पाकिस्तान जो मौकफ वाजे है जेस तई 1967 का अगु जो सरहदू अल कुदस की राजधानी सा फलस्तीन के तस्लीम न तो कयो वे तेस तई पाकिस्तान के मौकफ में का भी लचक पैदा न थी। नायब वजीर आलम इसहाक डार की वॉशिंगटन में अमेरिकी परे वजीर मार्को रुबियो से मुलाकात का प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसहाक डार तो पाकिस्तान अमन जो मेहमान है। 47 वरें बाद अमेरिका ईरान के गाल की मेज से विहारो। वजीर आजम शहबाज शरीफ ए फील्ड मार्शल के आलमी सतह से नई सुनाणप मिली। पाकिस्तान के दुनिया में अकेलो करने की भारतीय पॉलिसी नाकाम थी वही। दहशतगर्दी के मुंहजण के लिए कानून लागू कदर इदार किरदार अहमियत जोगो है। डोहन के मुंहजण के लिए सिंध पुलिस बेन इदार गदी कम कर रही है। वडे वजीर मुराद अली शाह जो नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद में सिंध पुलिस के डीएसपी जी पासिंग आउट परेड के खिताब। वरी वजीर जद अमन बहाल रखने के लिए सिंध पुलिस की बहादुरी अजम ए लगा पुख्तो है।

HIV बचाव मुहिम के लिए निकल ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर पारा गिम्स अस्पताल के HIV समेत मुख्तलिफ वार्ड जो दौरों अस्पताल में दाखिल बारन की आयादत कई। जूनियर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो चाहे तो कराची के सिंध का धार थे नींदी पूरा निज़ाम ही खराब है, निज़ाम के सुधारण पव महंगाई एतरी वही वही है जो मानू एक इंजेक्शन बीहर खरीद नथा कर सकन।

रबड़ में रुपए पुलिस मुकाबले में मारियल नौजवान के वारसन जो एहतजाज। वारसन जो चवराए तो नसीम टैक्सी हलए बचरन जो पेट पाली हो, खेस पुलिस जुड़त मुकाबले में कतल कर। माजी वेल नौजवान की न्याणी रोईंदे एहतजाज कर तो पुलिस बाबा के बेगुनाह कतल किया है। वारसन पारा जुड़त मुकाबले में मुलविज अहलकार खिलाफ कार्रवाई जो मुतालबो। जिना अस्पताल कराची में औरत के वॉशरूम में बाह जड़ने वाले वाकई की जांच के लिए कमेटी कायम। जांच टीम वाकई की जांच कर रिपोर्ट सिहत खाते सिंध के सेक्रेटरी के पेश कंदी। जिना अस्पताल में औरत पारा बार के वॉशरूम में जड़ने बाबत वीडियो वायरल थी हुई। सुल में परत के मुबैना कातिल वडेरे के पुलिस नव ढीह गुजरण बावजूद गिरफ्तार न कर। नव ॾींहं अॻु वॾेरे जे पुट बिलाल सरकी चौकीदार अजमल मेमण खे मुबैना तौर टे गोलियूं हणी क़तल कयो हो। पुलिस भंगारूगंज जी वाके खे इतफ़ाक़ी करार ॾेई केस बि दाख़िल करे छॾियो हो। ज़रियन मुजिब बासर मक़तूल जे वारसनि खे मीडिया वारो अचण खां धमकियूं ॾेई रोके रहिया आहिनि। मेहर में इंडस्ट्री फीडर जे मेन लाइन जूं तारूं चोरी, बिजली बंद। चोर गेट स्टेशन साम्हूं बिजली जे चइनि थंभनि मां तारूं चोरी करे विया। बिजली बंदि हुअण सबबि वाटर सप्लाई जी फराहमी बंदि थी वई। राइस मिल्स ऐं बर्फ़ जे कारखाननि समेत ॿियो कारोबार बि मुतासिर।

0: टकी लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन।
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
0: 0331252576।
1: जी हा 2315525786।
0: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

आप सुन रहे हैं GFM ETH नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

ओके जनाब, आपसे वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क. हमारे साथ यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरण मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो. स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से. तो यहाँ पर पहले मैंने आप लोगों को बताया व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, तो जाहिर सी बात है अब आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाएगा. तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में हम बहुत ज्यादा वाली बातें करेंगे. इसी के साथ साथ आप तमाम लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है. जिन लोगों ने अभी अभी सुनना स्टार्ट किया या फिर जो स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद है उन तमाम लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद. आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया. और इसी के साथ साथ आज के प्रोग्राम में मैंने आप लोगों से सवाल पूछ लिया है कि आप मुझे बताइए कि गर्मी में सबसे ज्यादा आपको किस चीज पर किस बात पर गुस्सा आता है, ये आप जरा मुझे बताइए. वैसे अगर गर्मी में हमसे ना कोई आराम से प्यार से कोई अच्छी वाली भी बात कर रहा होता है ना, तो बदले में हमें ना गुस्सा आ ही जाता है. ये गुस्से वाला जो सीजन, ऐसा गर्मी का सीजन ही, इसे गुस्से वाला सीजन कहना चाहिए. हर कोई गुस्से में है जनाब. अगर आप कोई अच्छी भी बात करें फिर भी अगले सामने वाला इंसान जो ना वो आपको गुस्सा ही दिखा रहा है. तो ये चीज है वाकई मैंने देखी, इसीलिए मुझे ये लगा कि मैं आप लोगों से पूछ लूं कि गर्मी में जब भी आप यानी कि देखा जाए तो कौन सी बातें कौन सी चीजें ऐसी है जो कि आप लोगों को गुस्सा दिलाती है. तो जल्दी जल्दी से आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए और 888 और फेसबुक पर आप हमें ज्वाइन करते जाइए. और साथ ही साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों के एरिया में अवेलेबल होनी चाहिए. ये एक बहुत एक जरूरी सी बात है और जरूरी सी एक चीज है जो कि बिल्कुल होनी चाहिए. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ में कर रहे होते हैं और उन्हीं डेली लाइफ में बहुत सारी चीजों के अंदर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. तो देखा जाए तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये आप लोगों की स्किन के मुताबिक तैयार की गई है. डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आप डी स्किन फेस वॉश भी लगाएंगे जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार क्वालिटी से तैयार शुदा है. और डी स्किन ब्यूटी फेस वॉश जो है ना वो जनाब इतना जबरदस्त है, इसके अंदर सीरम ऐड किया गया है और सीरम जो है वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है जिससे आपकी स्किन जो है ना वो रूखी सूखी नहीं रहती, आपकी स्किन क्लीन नजर आती है, आपकी स्किन के ऊपर जो है ना वो ग्लो नजर आता है और आप चमकते रहते हैं. लोग आपसे जरूर पूछेंगे कि भाई बताएं जरा आजकल आप क्या

इस्तेमाल करें। वैसे मुझे जो है ना वो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के जो प्रोडक्ट्स है ना वो इतनी प्रीमियम क्वालिटी के लगते हैं कि मैं ये सोचती हूँ कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को बहुत ही ऐसे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो आप लास्टली ट्राई करके देखिएगा, शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, आप ट्राई कीजिए। और अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो फिर आप डायल कीजिए 03-15-799-0595। ये नंबर आप लाजमी डायल कीजिएगा ताकि आपके एरिया में भी अवेलेबल हो जाए। और ये नंबर महर इरफान सियाल साहब से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और मजीद उनसे जो है ना वो मालूमात ले सकते हैं कि कहाँ पर अवेलेबल हैं ये प्रोडक्ट, आप कहाँ से जाकर परचेज कर रहे हैं या फिर आप परचेज करने वाले हैं। तो लाजमी आप इस नंबर के ऊपर रब्ता कीजिएगा और इसके साथ जो है ना वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर डी स्किन फेस वॉश हो ये भी आप अवेलेबल कराइएगा। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताते चलूं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये वाइटामिन ई बीड्स से तैयार की गई है, माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन के साथ साथ इसके अंदर जो है ना वो इतने जबरदस्त क्वालिटी की चीजें एड की गई है। अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके चेहरे के डार्क स्पॉट्स हों वो खत्म हो जाते हैं, आपके चेहरे की स्किन जो है ना वो ग्लोइंग बन जाती है, ब्यूटीफुल बन जाती है, स्मूथ बन जाती है, सिल्की बन जाती है और सॉफ्ट भी बन जाती है। इसी के साथ साथ सिर्फ आप दो रातें इस्तेमाल करते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना वो अपना असर दिखाने में स्टार्ट हो जाती है। तो दो रातें सिर्फ आप इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत ही अच्छे वाले रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो लास्ट में ट्राई कीजिएगा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक नाइट क्रीम है तो आप इसे रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे और साथ में डी स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल करेंगे जो कि ये दोनों चीजें आपके चेहरे पर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लाती है। और दोनों चीजें जब आप अपने चेहरे पर अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को महसूस होता है कि वाकई आप कुछ अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अच्छा लगाइए, अच्छे अच्छे दिखिए।

पाइए। टॉपिक ऊपर बात करते रहिए और बताइए आप हमें कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं, और उसके अलावा आपके मैसेजेस हैं, बिल्कुल जी आपके साथ बातें की जाएंगी। आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस पैनल पर इकट्ठा हो चुके हैं, तो पैनल की जानिब आ जाते हैं।

अच्छा चाचा तव्हां लिंक शेयर करे छॾियो मूंखे, ठीकु आहे, जीअं मूंखे ॻोल्हण में आसानी थी वञे. अच्छा ये मौजूद आहिनि, सलाम आपकी जान आई एम फहद अली लाशारी, मेरे साथ मेरा कज़न है इम्तियाज हुसैन लाशारी, आपका शो सुन रहा है. और आप ही आतिफ असलम का सॉन्ग सुनाए रफ्ता रफ्ता ओ सनम, सलाम टू ऑल. ओके जी, ओके आपका गाना लगाते हैं. मीर अल्लाह दिनो खान टालपुर हमारे साथ है, आपका शो वेरी वेरी नाइस है. सलाम आपको जी, वालेकुम असलम, वेलकम कहते हैं आपको भी. ये मौजूद है हमारे साथ आप ही जान आई एम फहद अली लाशारी. टॉपिक जवाब, जब मैं सोया हुआ हूँ और चलते चलते पंखा बंद हो जाए, मैं नींद से उठ जाऊँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है. ये तो भाई एक ऐसा गुस्सा है जो हर किसी को आता है. और इरम कहती हैं आप अभी तक गोश्त खा रही हैं या बेजार हो गई हैं? भाई हमारे घर में ना थोड़ा थोड़ा करके बंद है ताकि कुछ दिन चल जाए और लोग बेजार भी ना हो. और ये हमारे साथ जी फहाद दहरी, सऊद दहरी फ्रॉम नवाबशाह, सलाम अदी, खुश आयो जी, तव्हां ॿुधायो कीअं आहियो? शो तव्हां चयो आहे भलो आहे, सो तव्हांजो मोहबतूं प्रोग्राम ॿुधो पिया.

बात है जनाब, क्या बात है, बहुत साथ साथ आप ट्राई कर रहे हैं जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ डी स्किन का फेस वॉश भी आपको मिल रहा है। अपने करीबी जनरल स्टोर से जाइए, लाजमी मालूमात लीजिए और उनको बताइए कि आप जो है ना अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराइए डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश। अगर नहीं अवेलेबल कर पा रहे हैं, आपको नहीं पता कि कैसे अवेलेबल किए जाएंगे, तो भाई आपको जो नंबर बता रही हूँ उसके ऊपर रब्ता कीजिए ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो डायल कीजिए 03-15-799-0595। और बाबर अली के जेड हमारे साथ मौजूद है, सलाम सब सुनने वालों को, नाइस शो है रेडियो की क्वीन, आज गर्मी बहुत है फिर भी आपका शो सुन रहे हैं ये नहीं कह रहे फिर भी आप शो कर रही हैं ओके जी सुनिए सुनिए जरा। और ये नूरी संतनियो भाई हैं फ्रॉम समंदर पार, अदी सॉन्ग की रिक्वेस्ट है, बिल्कुल जी आपकी रिक्वेस्ट पूरी की जाएगी डेडिकेटेड स्पेशली आप, ईशा नूर हदीसा आसिम एंड के बाद आपका मैसेज शायद मिसिंग बैड हो चुका है। और ये मकसूद मल्हा हमारे साथ है, हेलो सिद्रा मुस्कान, सिद्रा मुस्कान मैंने कराची, अच्छा उसके शायद आपका मैसेज जो है ये मिसिंग पार्ट है, तो बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। विलेज गुलाम कासिम सोलंगी हैं गोरजा से, दिलावर हुसैन सोलंगी, बाजी सिद्रा आपको और आपकी सारी टीम को ईद मुबारक। बाजी सिद्रा हम सारा काम छोड़कर आपका प्रोग्राम बड़े शौक से सुनते हैं, आपकी आवाज बड़ी मीठी है माशाल्लाह, आज हमें शेला गुल का गाना तो सुनाइएगा, और आपने डेडिकेट किया है फराज शहबाजी आसिफ उस्ताद महर एंड सब सोलंगी ब्रदर्स को, थैंक यू जी आपका भी बहुत शुक्रिया।

ಚಾಹಿದೆ ಅದನ್ನ ಕಡೆಗ್ ಆಲ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕಡೆ ಪೋಡೋ ನಾಯ್ ತಿಂದು असलम महर है शुएब महर वालेकुम असलम पाजी व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जबरदस्त है और टॉपिक मुझे गर्मी में घर वालों पर गुस्सा आता है बाजी एम बिलावजह गुस्सा आता है या फिर किसी बात पर आता है ये जरा बताइए मुझे। मुनव्वर मुगल हमारे साथ ही मिर्पुर खास से कहते हैं आंखें खराब हो गई बच्चों को पाल कर अब बच्चे बात करते हैं आंखें निकाल कर जीते जी माँ बाप को। अच्छा शायद आपने एक पोइट्री लिखकर मुझे शेयर करी है लेकिन ये आपका मैसेज ना ये बीच में जो है ना थोड़ा सा कट हो गया है और पता नहीं क्यों आज बहुत से लोगों के जो मैसेजेस ना वो मिसिंग पार्ट मुझे मिल रहे हैं। यहाँ पर भी शायद नेटवर्क का मसला स्टार्ट हो चुका है। तो मुनव्वर मुगल आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे पास यहाँ पर दिल से वेलकम करते हैं। और जी ये गोट मोहम्मद तैयब थेबू का हबीबुल्ला थेबू तवान जो शो वेरी नाइस आहे एफएम जे ऑल टीम के ऑल लिसनर्स के तवान जी फैमिली के तवान के ईद मुबारक हुजन, तवान की ईद मुबारक हुजन। और ये हमारे साथी कश्यप अस्सलाम वालेकुम, आपकी ऐसी हैं आप गुड आफ्टरनून ईद मुबारक से जो वेलकम दिल से सॉन्ग सुनाओ ईद मुबारक ईद मुबारक ईद जा गाना ईद ते बुधासी ना।

वैसे गर्मी है, काले जोड़े जो है ना वो आप कमी पहनिएगा गर्मी में, वैसे भी कारा जोड़ा न पाइन घुर्ज गर्मी वधिक महसूस थींदव। सुठा सुठा कलर पायो, लाइट कलर पायो, ये तो राइम बन गई। ओके, काले जोड़े से जरा परहेज कीजिए। वैसे मुंह ही गानो लगाया खो टाइम थे, वो सही वालों गानो ना बुधोसी इन जी करे।

वैसे मुमताज मलिक का ये वाला गाना मुझे अच्छा लगता है. अच्छा रसूलाबाद का आबिद हुसैन चंबानी है. वालेकुम अस्सलाम अदी गर्मी में सबका घणो गुस्सो बरसा वेहण वारे ते ईंदो आहे. सभिनी खे ईद मुबारक. अल्लाह बरसा वेहण वारे ते गुस्सो ईंदो आहे छो भला. और ये मौजूद है गुड आफ्टरनून सिस. अब मेरी जब ना मेरी कॉल अटेंड नहीं होती तब मुझे गुस्सा आता है. मीरपुर खास से आप हमारे साथ मौजूद है. अपना नाम नहीं लिखा सो आपको वेलकम किया जाता है. और ये है जी हमारे साथ हमारी इरम कहती से जानी जवाब है. चंबर सिटी में 2 या 3 दिन बिजली नहीं आती तो फिर मुझे गुस्सा आता है. वैसे मुझे गुस्सा कम आता है. मैं इतनी गुस्से करने वाली लड़की नहीं हूँ. चलें अच्छी बात है कम गुस्सा किया करें. विलेज मोहम्मद इब्राहिम संदीलो से. मोहम्मद हारून संदीलो हैं आप हमें सुन रहे हैं. बहुत शुक्रिया जी. और

0: अरे भाई गुस्सा ना करें ना करें गुस्सा। इमरान अली भाई आपको वेलकम करते हैं, बकरा जिंदाबाद। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को मुख्तलिफ गाने सुनाऊं। एक जैसे गाने नहीं सुनती ना, अच्छी बात नहीं होती इसीलिए। और यहाँ पर जो है ना, मैं देख रही हूँ तो टाइम हो जाता है, जरा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ही जाने में जाया जाए, और शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जल्दी से वापस। 3 बजे तक आपका हमारा साथ है, सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम इज नाउ व्हाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स। एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते रहिए।
1: आप सुन रहे हैं,
2: आप सुन रहे हैं
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: खूबसूरती जो सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम, हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार, स्पोर्ट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अप्राराकोन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

ओके जी अनवर भाई जान हमें सुन रही है। अनवर भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ साथ हैं। नूर सिंह तुनियो भाई लिखते हैं, पोइट्री रीड कीजिएगा, हम इतने भी नहीं बदले कि भूल जाएं अपनों को, जब कोई मंतजर ना हो तो राबता करना हमें भी अच्छा नहीं लगता। वाह वाह क्या बात है जी। खास के लिए कहते हैं सिद्धरा असां जो कॉमेंट पूरो नथा पढ़ो। नन्ना बाबा कॉमेंट बिल्कुल पूरो पढ़ंदासीं, तव्हां जो मोहबतूं आहिनि, तव्हां प्रोग्राम ॿुधो पिया असां जो। अनवर भाई कहते हैं जेको मिजाज खां अपोजिट ॻाल्हाईंदो आहे त ॾाढो गुस्सो ईंदो आहे। इहा वैसे सही ॻाल्हि आहे। अच्छा ये चाचा खालिद कहते हैं बेटा सिद्धरा फरजाना पढ़िया मुझा SMS FB ते चवे थी ही प्रोडक्ट्स फीमेल लाए ठाया वया आहिन, तवान ऑर्डर कयो हाने मां छा कयां, मां ते फांसियाल साहब सा राबतो कयां पयो। नना ही सबनी जलाया आहिन, तवान आंटी के चो आंटी तवान भी लगायो, अंटा तवान भी लगायो, सबनी जलाया आहिन। सो मर्द मायो सभी लगाए सगन था, तवान बिल्कुल राबतो कयो, इनके बुधायो तो तवान जे एरिया में ना अवेलेबल सी अवेलेबल कराए सगन। ठीक आ ओके जी। अर्ज मोहम्मद गोला भाई हमें सुन रहे हैं, जेकब आवाज से आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया। अयास अली खास के लिए हमें सुन रहे हैं भाई झंडो मरी से, आपको भी ज्वाइन कर सकते। अच्छा आपको भी वेलकम कर रहे हैं। इट्स सोनू हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम। और ये जी विभा देवी हमारे साथ है, हाय हेलो। और उसके अलावा है इमरान भट्ट, वालेकुम अस्सलाम। विभा देवी आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है, उसके लिए बहुत शुक्रिया।

ओके जी, बहुत ही ज्यादा प्यारा गाना हमने एंजॉय किया. एक और प्यारा गाना हमारी लिस्ट में मौजूद है जो कि आतिफ असलम की आवाज में होने वाला है, और ये हम फहद भाईजान को डेडिकेट करेंगे.

0: ओके जनाब, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का आप इस्तेमाल करते जा रहे हैं। डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आप अच्छे से जानते हैं जनाब, डी स्किन फेस वॉश भी आपको मिल रहा है। अपने करीबी जनरल स्टोर पर जाइए, वहाँ से मालूमात लीजिए। ना मिलने की सूरत में डायल कीजिए 03157990595। तो डी बारे में आप लोगों को बताते चलें कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स फॉर्मुलेशन के साथ तैयार की गई है। सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से आप लोगों को बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देने वाली है, चाहे वो आपके चेहरे के डार्क स्पॉट्स हो, निशानात हो, स्किन डल चेहरे पर। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करके आप अपनी खूबसूरती में 4 चांद लगा सकते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर जाइए, वहाँ से मालूमात लीजिए, परचेज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक नाइट क्रीम है जिसे आप रात के टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने से पहले आपने डी स्किन फेस वॉश जो है ना वो इस्तेमाल करना है। अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कीजिए, उसके बाद आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम अप्लाई कीजिए, ताकि ये दोनों चीजें जब आप साथ में इकट्ठा लगाएं तो आप लोगों को परफेक्ट वाला हुसन मिल जाए। सो बिल्कुल जनाब, डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ डी स्किन फेस वॉश लगाते रहिए और खूबसूरतियाँ हासिल करते रहिए।
1: तू ही तू, तू ही खाब है, तू ही मेरे रूबरू, तू ही।
0: अच्छा, हजार खान जतोई भाई हमें सुन रहे हैं। हजार खान जतोई भाई, वालेकुम अस्सलाम, आयो ठीक ठाक। हिदायतुल्लाह, बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो मुझे अच्छे नहीं लगते और वो कहती नहीं, वो अलग बात है। और वासु भाई, आपको शो पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया।

राजा किशोर भाई लिखते हैं कि रात के अंधेरे में एक नूर हो, मेरे लिए तुम ही तुम हो। शायरिया या गानो आ बुद्धात। अच्छा वासु भाई कहते हैं अदी सिडो मां तवा जो पुराणो फेन आया जेको कदे कदे ना हलंदो उनके। चलो हाँ वैसे पुरानी चीजों आगे थोड़ी खराब थी वेंदियूं आहिनि पर तव्हां मुंहिंजा उहे फेन आहियो जेके हमेशा नवा नवा रहंदा।

अच्छा एक पोइट्री है, इस गाने के साथ जरा मेल जा रही है तो मैंने सोचा कि आप लोगों को सुना देती हूँ। मोहब्बत करती है पर दोस्त बुलाती है, मोहब्बत करती है पर दोस्त बुलाती है, ये कैसा रिश्ता है जो डर डर के निभाती है। मोहब्बत करती है पर दोस्त बुलाती है, ये कैसा रिश्ता है जो डर डर के निभाती है। नजरों से चूमती है, लफ्जों से ठुकराती है, मुझे भी उलझाती है। ये कैसा रिश्ता है जो डर डर के निभाती है, ना इस पार आती है ना उस पार जाती है, ना इस पार आती है ना उस पार जाती है, हक आशिकों का और हदें दोस्ती की निभाती है। किसी और का जिक्र करूं तो जलसी जाती है, मेरे हर हिस्से में अपना हिस्सा चाहती है। अक्सर पूछती है मुझसे तुम कौन हो मेरे, अक्सर पूछती है मुझसे तुम कौन हो मेरे, फिर कसम खाती तो कसम मेरी ही खाती है। मोहब्बत पर दोस्त बुलाती है, ये कैसा रिश्ता है जो डर डर के निभाती है, ये करके निभाती है।

अरे गाना वाकई बहुत अच्छा है और मैं वो एक वाहिद इंसान हूँ शायद जिसने अभी तक ये ड्रामा नहीं देखा. अच्छा आजकल पता नहीं क्यों मुझे ड्रामे जो है ना वो अच्छे नहीं लग रहे. और उसके अलावा ये हमारे साथ कंबर से हैं जी हमारी प्यारी लीला परी. लीला परी आपको वेलकम करते हैं. स्वीटी कहती हैं क्या हो गया है आपको, आप इतनी प्यारी हैं माशाल्लाह. मकसूद मलाह हमारे साथ हैं सिद्रा मुस्कान. मैंने कराची इस्लामाबाद लाहौर में प्रोग्राम सुने हैं लेकिन आपका प्रोग्राम आपके प्रोग्राम की एक अलग दुनिया है. हाँ जी ये तो बात है. वैसे इरम हमारे साथ हैं. इरम आपका बहुत शुक्रिया जी आप हमारा शो सुन रही हैं. गोड मोहम्मद तैयब थेबू कहाँ भी बुला थेबू है सॉन्ग बुधराए जो तवांगे सुबानी गाना बुधराइंदा सी. और बाजी टॉपिक है गर्मी में हम गुस्सा नहीं करते क्योंकि ऐसी है जिंदगी जिंदाबाद चल रही है. इमरान अली बिरोही हमें सुन रहे हैं बहुत शुक्रिया जी. सदा खालिद आपका बहुत शुक्रिया गाना आपका लगाते हैं जिस गाने की बात. विलेज मोहम्मद इब्राहिम संदीलो से मोहम्मद हारून संदीलो है. बाजी आपकी आवाज नाई से और आपको नजरे बस से बचाए आमीन आमीन आमीन. और विलेज से गुलाम कासिम सोलंगी हमारे साथ हैं. गोरजा से दिलावर हुसैन सोलंगी. बाजी सिद्रा छोटे बच्चों के गोड से गुस्सा आता है. बाजी सिद्रा रिक्वेस्ट की है शीला गुल के गाने की. मैं तुम्हें भूल चुकी चलें आपका जो शीला गुल का गाना है ना वो हम कल वाले प्रोग्राम में लाजमी लगा देंगे. मुझे याद होगा बस आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कीजिएगा मैं आपका गाना जो है ना वो सुना दूंगी आपको. ठीक है बहुत शुक्रिया. और आपने डेडिकेशन सेंड कर दी है जमादार वीरम सोलंगी एंड जमादार खुदा बख्श सोलंगी के नाम. ओके जी. विलेज मोहम्मद इब्राहिम संदीलो से मोहम्मद हारून संदीलो है. बाजी अच्छा बहुत शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सुन रहे हैं. लीला परी कहती हैं जब आपका शो सुनती हूँ तो दिल करता है. अच्छा काम काज छोड़कर आपके साथ बैठी रहूं और तसव्वुर कर लेती हूँ कि आप हमारे साथ हैं. जी तसव्वुर कर लिया करें. आपने सलाम दिया है रुखसाना सीमा को. चलें जी बहुत शुक्रिया मेरी जाना खुश रहें. अच्छा फहद भाई जान आपका बहुत शुक्रिया. अच्छा दर्दी दिल कहती हैं टॉपिक चंदा मुझे हर काम पर गुस्सा आता है.

यहाँ भी काम का नाम आए मुझे गुस्सा आ जाता है, भाई काम चोरी मत किया करे। अमी चंदिया लड़की जात आ लड़की जात की न करण घुर्जे, सो औरत के कम करण घुर्जे। काम चोरी नहीं चलेगी। अली अकबर ब्रोई भाई हमारे साथ मौजूद है सकरण से, आप हमारा शो सुन रहे, बहुत शुक्रिया। सखावत तवान जो गानों सुबानी हलाईंदासीं, ठीक आहे तव्हां सुबाणे असांखे जॉइन कजो 1 बजे खां 3 बजे ताईं, तव्हां असांजो प्रोग्राम ॿुधी सघो था।

ओके सो गानो ही प्रोग्राम जो लास्ट वारो मु लगायो थम हाणे इंशाल्लाह तव्हां सां मुलाक़ात मुंहिंजी सुभाणे वारे प्रोग्राम में थियण वारी आहे 1 बजे खां 3 बजे ताईं तव्हांजो सॼो साथ हूंदो आहे प्रोग्राम आहे जनाब वाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो तव्हां ताईं पहुचायो वञे पियो जनाब वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जे तावन सां सो तव्हां वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजनि या वरी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजनि तव्हां लाज़मी ट्राए करे ॾिसो इस्तेमालु कयो सुहिणा सुहिणा थी वञो ख़ूबसूरती खे जेको आहे न उहो तव्हां सभ खां अवल रखंदा कयो ख़ूबसूरत रहो ऐं ख़ूबसूरती खे प्रोडक्ट्स ऐं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमालु कंदा रहो ऐं किथे का ग़लती थी हुजे त मां अव्हां खां माज़रत कयां थी काई चई हुजे जेका तव्हांखे सुठी न लॻी हुजे त हुन जे लाइ माज़रत तव्हां पंहिंजो इलाही सॼो ख़्यालु रखिजो सो मोकिलाणी नाहे बाबू सलामत सां सलामत अलाह हाफ़िज़ बाय लव यू ऑल एंड टेक केयर

अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जंगबंदी में वाधा बाबत फैसलो न कर सको। व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में अहम इजलास बिना नतीजे खत्म। अमेरिकी अखबार खुशी दावा। व्हाइट हाउस पारा चाहिए तो ईरान से वायदो अमेरिकी मुफादा ने ट्रंप के शर्त तहत ही मुमकिन है। इन अगु अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान की पहली नाकाबंदी खत्म करण जो ऐलान किया।

सदर ट्रम्प ॿिया मक़सद हासिल करण में सरगर्म आहे। अमेरिका ईरान जी पहिरीं नाकाबंदी ख़तम नाहे कई। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई जे सलाहकार मोहसिन रज़ाई जो ट्रम्प जे यूटर्न ते रद्द अमल। मोहसिन रज़ाई चयो त अमेरिकी सदर सिफारतकारी दौरान टियों भेरो दोखो ॾेई रहियो आहे। अमेरिका तरफ़ां ॻाल्हियुनि में हद खां वधीक मुतालबा कया पिया वञनि। ट्रम्प जे अमल साबित करे छॾियो त हू ॻाल्हियुनि में संजीदा नाहे।

0: एच आई वी बचाव मुहिम के लिए निकल ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर पारां गिम्स अस्पताल के एच आई वी समेत मुख़्तलिफ़ वार्ड्स जो दौरो अस्पताल में दाखिल ॿारनि जी आयादत कई। जूनियर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो चयो त कराची खे सिंध खां धार थियण न ॾींदासीं, पूरो निज़ाम ई ख़राब आहे, निज़ाम खे सुधारणो पवंदो। महांगाई एतिरी वधी वई आहे जो माण्हू हिकु इंजेक्शन ॿीहर ख़रीद नथा करे सघनि।
1: रोज़ी करे ॾींदो हुयो।

0: जिना अस्पताल कराची में औरत जे वॉशरूम में ॿार ॼणण वारे वाक़े जी जांच जे लाइ कमेटी क़ाइमु। जांच टीम वाक़े जी जांच सूमर ताईं मुकमल करे रिपोर्ट सिहत खाते सिंध जे सेक्रेटरी खे पेश कंदी। जिना अस्पताल में औरत पारां ॿार खे वॉशरूम में ॼणण बाबति वीडियो वायरल थी हुई। चुल में पहिरत जे मुबैना कातिल वरेरे खे पुलिस नव ॾींहं गुज़रण बावजूद गिरफ़्तार न कयो। नव ॾींहं अॻु वरेरे जे पुट बिलाल सरकी चौकीदार अजमल मेमण खे मुबैना तौर टे गोलियूं हणी क़तल कयो हो। पुलिस वंगारूबण जी वाके खे इतफ़ाक़ी करार ॾेई केस बि दाख़िल करे छॾियो हो। ज़रियनि मुंहिंजे बासर मक़तूल जे वारसनि खे मीडिया वारो अचण खां धमकियूं ॾेई रोके रहिया आहिनि।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: GAFM नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: शदीद गर्मीअ सबब शहरन खे गुज़ारिश कई वञे थी त सुबुह 11 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं ख़ास एहतियाती तदबीरूं अख़्तियार कनि। गैर ज़रूरी तौर ते ॿाहिरि न वञो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो ऐं उन दौरान शदीद जिस्मानी कम खां पासो करियो। ॿारनि, बुज़ुर्गनि ऐं बीमार माण्हुनि जो ख़ासि ख़्यालु रखो। वधीक पाणी पीओ ऐं महफ़ूज़ रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक ऐं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट जे तावन सां पेश कयो वियो।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: शदीद गर्मीअ सबब शहरनि खे गुज़ारिश कई वञे थी त सुबुह 11 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं ख़ासि एहतियाती तदबीरूं अख़्तियार कनि। गैर ज़रूरी तौर ते ॿाहिरि न वञो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो ऐं उन दौरान शदीद जिस्मानी कम खां पासो करियो। ॿारनि, बुज़ुर्गनि ऐं बीमार माण्हुनि जो ख़ासि ख़्यालु रखो। वधीक पाणी पीओ ऐं महफ़ूज़ रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक ऐं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट जे तावन सां पेश कयो वियो।
4: अब आपकी खूबसूरती का फैन, White Age Beauty Cream।

0: मेरा
1: फैन। White H Beauty Cream 5-Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ जिसके स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन का अफ बायोनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़ GFM 94।

अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जंगबंदी में वाधा बाबत फैसलो न कर सको। व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में अहम इजलास बिना नतीजे खत्म। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की दावा, व्हाइट हाउस पारा चाहिए तो ईरान से मुआदो अमेरिकी मुफादन ट्रंप के शर्तन तहत ही मुमकिन है। इन अग अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म करने जो ऐलान किया हो। सदर ट्रंप बया मकसद हासिल करने में सरगर्म है। अमेरिका ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म ना कई। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के सलाहकार मोहसिन रज़ाई जो ट्रंप के यूटर्न से रद्द अमल। मोहसिन रज़ाई चाहिए तो अमेरिकी सदर सिफारतकारी दौरान टों भेरो धोखो रही रो है। अमेरिका तरफा गाल में हद का मुतालबा क्या पा वन ट्रंप के अमल साबित कर छो तो गाल में संजीदा ना है।

पहिरां पुलिस मुक़ाबले में मारियल नौजवान जे वारसनि जो एहतजाज। वारसनि जो चवणु आहे त नसीम टैक्सी हलाए बचड़नि जो पेट पालींदो हो। पुलिस खेसि जुड़तू मुक़ाबले में क़तलु कयो। मक़तूल नौजवान जी नियाणी रोईंदे एहतजाज कयो त पुलिस बाबा खे बेगुनाह क़तलु कयो। वारसनि पारां मुलविज़ अहलकारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई जो मुतालबो।

0: कराची जी जिना अस्पताल में औरत पारा वॉशरूम में बाल जड़न वाले वाके की जांच के लिए कमेटी कायम जांच टीम वाके की जांच सूमत ऐं मुकम्मल करे रिपोर्ट सेक्रेटरी सेहत के पेश कंदी जिला अस्पताल में डॉक्टर की मुबैना गफलत सबब औरत पारा बार के वॉशरूम में जड़न बाबत वीडियो वायरल थी हुई
1: आप सुन रहे थे।

0: GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: शदीद गर्मी सबब शहरन के गुजारिश कई वने थी तो सुबह 11 वगे का शाम 4 वगे ताई खास एहतियाती तदबीरू अख्तियार कन। गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो, उन दौरान शदीद जिस्मानी कम का पासो करियो। बारन बुजुर्गन बीमार मानन जो खास ख्याल रखो, वधिक पानी पियो, महफूज रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध PDMA कमिश्नर कराची के इलेक्ट्रिक सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन से पेश कयो वयो।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
4: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
4: आई। हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 0331252578 6।
4: जी हाँ बुड़ी 3315527786
3: GAFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: पाकिस्तान अमेरिका जो मुख़्तलिफ़ दोस्त है शहबाज शरीफ ए फील्ड मार्शल अमन गाल में शानदार किरदार अदा कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जंगबंदी में बात है।

नया तलो एक्टिव एनर्जी से भरे खाने, इसीलिए सब बच्चे यही है चाहते।

0: गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
1: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते
1: 0331252578 6।
0: जी हा, 2525576।
1: GFA रेडियो नेटवर्क,
0: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 88.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां लुक रोज़ानो जा हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी, वाइट एज ब्यूटी क्रीम जो राज। Product by Biocon International Pakistan।
2: मातली के हो तो आतली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

छा करणो आहे। अमरीकी जंग वारे वज़ीर पेट हेक्सेथ जी मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल। पेट हेक्सेथ चयो त ईरान कंहिं बि सूरत में एटमी हथियार नथो रखी सघे। पाकिस्तान अमरीका जो मुख़लिस दोस्त आहे। शहबाज शरीफ ऐं फील्ड मार्शल अमन ॻाल्हियुनि में शानदार किरदार अदा करे रहिया आहिनि।

आहे। अमेरिका तर्फ़ां ॻाल्हियुनि में हद खां वधीक मुतालबा कया पिया वञनि। ट्रंप जे अमल साबित करे छॾियो त हू ॻाल्हियुनि में संजीदा न आहे। जंग जे ख़ात्मे लाइ बावक़ार फ्रेम वर्क लाइ तयार आहियूं। वक़्तु अची वियो आहे त ॿिए रदेबल ऐं लफ़्ज़नि सां पंहिंजी नियत साबित करे। ईरानी सदर जे कतरे अमीर शेख तमीम बिन हमद अंसारी फोन ते राब्तो करे ॻाल्हि ॿोल कई। मसूद पेशकियान चयो त ईरान ईमानदारी सां ॻाल्हियुनि जो रस्तो इख़्तियार कयो, ज़रूरत आहे त ॿी धुर आलमी ज़िमेवारनि जी पासदारी करे।

रानीपुर से फेरोसाजी राजपुर गोठते बरसात प्रोशन की गिरफ्तारी लाए पुलिस चढ़ाई दौरान हथियारबंदन की फायरिंग में एक पुलिस अहलकार शहीद गोलियों लगन सबब शहीद थी वेल अहलकार मोहम्मद वारिस नारे जो लाश अस्पताल मुंतकिल अहलकार की शहादत का पुलिस जो सागे गोठ में सर्च ऑपरेशन दौरान पंज शकी जवाबदार गिरफ्तार एचआईवी बचाव मुहिम लाइ निकतल जिलो जूनियर गंबट के गिम्स अस्पताल पहुंतो एचआईवी में मुब्तला बारन की आदत जूनियर जुल्फकार अली भुट्टो मीडिया से गालाइंदे कराची के सिंध का धार थे नींदी पूरे मुल्क में सेहत जो शोबो खराब है उनके सुधारण पवन एचआईवी में मुब्तला मरीजन से नफरत न पर प्यार कयो।

0: आज मेहमान आने हैं घर पे। सुबह सुबह इस ख्याल ने उठा दिया है कि दावत के मेन्यू में क्या क्या होगा।
1: कोरमा बनाती हूँ।
2: भाभी के हाथ का कोरमा तो मस्त है,
1: बल्कि बिरयानी भी बना लेती हूँ।
3: आज बिरयानी हो जाए तो मजा आ जाए।
1: अचार गोश्त तो लाजमी बनेगा। अम्मी को तिक्का बोटी भी पसंद है।
4: निहारी बनाई तो हलीम का क्या फायदा,
1: पर हलीम ना बना तो मजा नहीं आएगा।
5: ऑफर ही ऐसी है कि सब कुछ बनाने का दिल चाहेगा, क्योंकि नेशनल रेसिपी मिक्सर्स ने दे दिया है अपनी मखसूस रेंज पर खास डिस्काउंट, ताकि आप सब कुछ बनाएं बिना घबराए।
6: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
7: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
8: छा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो,
9: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए,
8: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
9: आई हाँ, गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
8: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार लाइन लाए,
9: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
8: 0331252586।
9: जी हाँ, 2315525786।
8: GAFM रेडियो नेटवर्क,
9: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: खूबसूरत जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल।
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

दोपहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध
1: की के हो तो आवाज भी मात्र
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनिए FM 90.4।

0: Thanks for watching this video. For more updates, subscribe Shehla Gul Official.
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: का हुआ। आवाज की डोर से बंधा हुआ।
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध की
2: रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज़े हैं सारे।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली।

टॉस पंज विकेट्स वठण में कामयाब। शाहिन शाफरीदी पारां टॉस खटी पहिरियों फील्डिंग करण वारो फैसलो दुरुस्त साबित थियो। कैंगरूज़ जी समूरी टीम 45 ओवर में पवेलियन पीड़ी थी वई। इरफान मिन्हास 5 ऐं अबरार अहमद 2 विकेट्स वरितियूं। महमान टीम जा 6 रांदीगर डबल फिगर में दाखिल न थिया। अजोकी मैच खेॾण बाद पाकिस्तान 1000 वनडे मैचेस खेॾण टीं टीम बणिजी वई।

0: ಮಂಡಲ್ ಸಾನಿ ರಾಪ್ತೋ ರಾಪ್ತೆ ದುರಾನ್ ಗಾಲ್ ಬೋಲ್ ಮೇ ವಸತ್ ಸಿಕ್ಯಾನ್ ಚೋ ತಾ ಇರಾನ್ ಇಮಾನದಾರಿ ಸಾ ಗಾಲಿಯನ್ ಜುರಸ್ತ ತಯಾರ್ ಕಯೋ ಜರೂರತ್ ಆಯ ತಾ ಬೀ ದೂರ ಆಲಮಿ ಜಿಮ್ಮೇವಾರನ್ ಜಿ ಪಾಸ್ತಾರಿ ಕರೆ रानीपुर के फेरोज हाजी राज पर गोट ते मनशियात फरोशन की गिरफ्तारी लाए पुलिस चढ़ाई दौरान हथियारबंदन की फायरिंग में एक पुलिस एहलकार शहीद गोलियों लगन सबब शहीद थी वियल एहलकार मोहम्मद वारिस सारे जो लाश अस्पताल मुंतकिल एहलकार की शहादत का पोए पुलिस जो सागे गोट में सर्च ऑपरेशन दौरान पंज शकी जवाबदार गिरफ्तार एचआईवी बचाओ मुहिम लाइ निकल जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर गंबट की गिम्स अस्पताल पहुंतो एचआईवी में मुब्तला बारडन की अयादत जूनियर जुल्फकार भुट्टो मीडिया से गालाइंदे चयो त कराची केसन का धार थे नींदासी पूरे मुल्क में सेहत जो शोबो खराब आए उनके सुधारणो पवंदो एचआईवी में मुब्तला मरीजन सा नफरत नफर प्यार कयो
1: ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

0: छावा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन।
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
0: 0331252576।
1: जी हा 2315525786
0: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: Thanks for watching this video. For more updates, subscribe Shehla Gul Official.
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिससे मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर, अपना घर, माथली और माथली की आवाज़, GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM ETH नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अपना शहर, अपना घर।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन।

आहे त ईरान सां जेका बि डील थींदी सुठी हूंदी। सदर ट्रंप को बि मफ़ादनि खे नज़र में रखी कंदो, असां जंग लाइ आहियूं। जंग जे ख़ात्मे लाइ पवकार फ्रेमवर्क लाइ तयार आहियूं। वक़्तु अची वियो आहे त वीधुर अमल ऐं लफ़्ज़नि सां पंहिंजी नियत साबित करे। ईरानी सदर जे कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी सां फोन ते राब्ते दौरान ॻाल्हि ॿोल। मसूद पेशकियान चयो त ईरान ईमानदारी सां ॻाल्हियुनि जो रस्तो इख़्तियार कयो, ज़रूरत आहे त वीधुर आलमी ज़िमेवारनि जी पासदारी करे। कुवैत में एयरबेस ते ईरानी हमले में केतिरा ई अमरीकी फ़ौजी ज़ख़्मी थिया, अमरीकी ख़बरू इदारे ब्लूमबर्ग जी दावा। रिपोर्ट में चयो वियो आहे त ईरानी हमले में MQ-9 रिपेयर स्ट्राइक ड्रोन खे सख़्त नुक़सान पहुतो। कुवैती एयर डिफेंस सिस्टम फताह 10 मिसाइल किरियो। पाकिस्तान खे आलमी सतह ते अकेलो करण वारी मोदीअ जी 10 सालनि वारी मुहिम बुरी तरह नाकाम थी वई। अरब मीडिया जो चवण आहे त मोदी पाकिस्तान खे दुनिया खां परे करण वारी मुहिम में

गिरफ्तार शहीद, गोलियों लगन सबब शहीद थी वियल एहलकार मोहम्मद वारिस नारे जो लाश अस्पताल मुंतकिल। एहलकार की शहादत का पुलिस जो सागे गोठ में सर्च ऑपरेशन दौरान पंज शक्की जवाबदार गिरफ्तार। HIV बचाओ मुहिम लाइ निकतल जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर गंबड़ जे पहुतो। HIV में मुब्तला बार्डन जी जुल्फकार भुट्टो मीडिया सां कराची खे सिंध खां धार थियण न ॾींदासीं। पूरे मुल्क में सिहत जो शुबो ख़राब आहे, हुन खे सुधारणो पवंदो। HIV में मुब्तला मरीज़नि सां नफ़रत नफ़त प्यार कयो।

0: कुर्बानी ऑप्शन से ट्रस्टेड
1: पढ़ाए था नसीम टैक्सी हलाए बचरन जो पेट पाली तो हो तू मुकाबलो में कत्ल कयो मक़तूल नौजवान जी न्याणी रोईंदे एहतजाज कयो तो पुलिस बाबा के बेगुनाह कत्ल कयो वारिसन पारा मुलविस अहलकारन खिलाफ कार्रवाई जो मुतालबो कराची जिना अस्पताल में औरत पारा वॉशरूम में बाहर जाने वाले वाक्य की जांच लाए कमेटी कायम जांच टीम वाक्य की जांच सूमर ताई मुकम्मल कर रिपोर्ट सेक्रेटरी सेहत के पेश कंदी जिना अस्पताल में डॉक्टर की मुबैना गफलत सबब औरत पारा बार के वॉशरूम में जाने बाबत वीडियो वायरल थी हुई फुल में पोरियो जो मुबैना कातिल वडेरो पुलिस की पकड़ का आजो नव डी अग वडेरे के पुट बिलाल सरकी चौकीदार अजमल वेमण के मुइया तौर चे गोलियों हणी कत्ल कयो हो पुलिस बंगारोपण की वाक्य जो इतफाकी केस दाखिल कर छो हो जरियन मौजिब बासर मकतूल के वारिसन के धमकियों डेई मीडिया आडो अचण का भी रोके रहा है
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
3: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ
4: मोर को दिल्ली राणा मोर को दिल्ली
3: आवाज की डोर से बंधा हुआ
5: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
6: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे
7: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
8: त पोइ GAFM 0.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
7: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
8: ऐं हा गोरे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जी
7: पोइ हाणे खणो फोन

0: It's 9:15 p.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: आप सुन रहे हैं GFM 88 Network, सिंध की आवाज. अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4.

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर, अपना घर, माथली और माथली की आवाज़, GFM 90.4।